0: करूँ माई
1: हाथ में किया है
0: करूँ माई करेगी पकड़ूँ
2: माई
0: पकड़ूँ माई करेगी पकड़ूँ माई।